एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरज तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: हक मूवी से अरमान खान की आवाज में बेहद खूबसूरत गाना कबूल है ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आगे जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान 31st of August मंडे का दिन महीने का आखिरी दिन पर हफ्ते का दूसरा जी आई नो हम सब फिर से थर्सडे के इंतजार में है कि वीकेंड आ जाए वेल कैसा था आपका कल का दिन आज के क्या प्लान्स हैं क्या कर रहे हैं इस वक्त अभी जब मैं ऑफिस की तरफ आ रही थी आई सॉ सो मेनी किड्स आउट देयर यू नो वेटिंग फॉर देयर बसेस और पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं कुछ एंड या स्कूल डेज आर बैक तो कैसा चल रहा है बच्चों से भी जानना चाहूँगी अगर पेरेंट्स ड्रॉप कर रहे हैं इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं तो बताएं मुझे हाउ वाज द फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल कैसा रहा और कुछ लोगों का शायद आज भी फर्स्ट डे है तो टेल मी हाउ एक्साइटेड यू आर 3311 1063 पर मैसेज कीजिए ऑल्सो द पीपल आर गोइंग टू वर्क राइट नाउ अगर ड्राइव कर रहे हैं तो सुनते रहिए जब पहुँच जाएँ तब मैसेज कर देना और अगर मौका मिलता है तो मुझे मैसेज कीजिए और बताइए कैसे हैं एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग भी भेज दो मेरी जान
1: तू मेरा हो गया इतना ही काफी है दिल मेरा जुड़ गया तुमसे ये काफी
0: दिस ब्यूटीफुल ट्रैक कुछ ही देर में आने वाला है मुसाफिर कैफे से और अरिजीत सिंह भी इंतजार कर रहे हैं
1: दिल ही रवाने फिर से नैना भरे समझे थे
0: क्रेजी इमोशंस भाई इस गाने में तो

टू ऐड दैट एनर्जी टू योर मॉर्निंग दिस वन. एंड ये गाना मैं कब से सोच रही थी, अभी जो मैं चलाने वाली हूँ उसकी बात कर रही हूँ. इट वॉज स्टक इन माई हेड फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, शायद मैंने किसी रील में देखा होगा या फिर यू नो कहीं तो सुना चलते हुए. एंड आई वॉज लाइक यार ये कौन सा गाना है, एंड आज ही मेरी प्ले लिस्ट में था. एंड आई वॉज लाइक अरे या

बहुत ही प्यारा गाना है ये सब आ रहे हैं इस घंटे में आपके लिए फिलहाल मैं मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ 3311 1063 पर सुन रही है रेडियो 11.06.3 FM जियो बिंदास

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
1: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
3: मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव पे.

0: सुबह हर सुबह 6 से 10 हर जिस निशा को बिंदास मॉर्निंग में मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: Danisha.
1: Danisha. Durandar Dhirwind se phir se beautiful track in the voice of Arijit Singh only on Radio Olive 106.3 FM. Danisha aapke saath mein 10 mornings chal rahe hain yahan par and kuch messages aaye hain, aaiye padhte hain saath mein. Nazri ji kehti hain, good morning. Too often we see ourselves as the past victim rather than the creator of our present situation. This is why our life is so difficult to change from one moment to the next. Exactly. जो हो गया वो हो गया यार, उसे carry forward करके नहीं चलने का है life में. नए और बेहतर experiences के लिए जगह बनानी पड़ेगी ना, तो जो पहले हो चुका है उसे let go तो करना ही पड़ेगा. जी हाँ. And हरपाल संतोष जी का भी message आया, good morning friends, no matter what knocks you down in life, get back up and keep going. Never give up. Great blessings are a result of great perseverance. Have a blessed day. Harpal Sandhu from Zikrit Dukhan. That is such a beautiful thought. Exactly, yaar. Ups and downs to aayenge hi na. Agar hum downs ko lekar baithe rahenge and lagega ki ab to main kuch kar hi nahi sakti, to main actually kuch nahi kar paungi. The day I decide ki bhai main to dobara se utke fir se chalungi and I'm gonna, you know, get back up again, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी. सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है. एंड अबराज जी का भी गुड मॉर्निंग आया है हमें. शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है, कहते हैं, रिलेशंस एंड मेडिसिंस प्ले द सेम रोल इन आवर लाइफ, बोथ केयर फॉर अस इन पेन, ओनली डिफरेंस इज ट्रू रिलेशनशिप डोंट हैव एनी एक्सपायरी डेट. रियलिटी चेक्स ओनली इन द मॉर्निंग. एंड जुल्फी जी का मैसेज आया है, कहते हैं, smile and be happy, be grateful for all the good things in your life. Indeed, gratitude is really really important, you know, because jo cheez aur jo life aaj hum jee rahe hain, kabhi iska sapna dekhte the. So agar aaj ye hamare paas hai to uske liye grateful hona to banta hai. Sending a beautiful cool song of the hour for you. You keep messaging me, ye rukna nahi chahiye. 3311 1063. Stay tuned and Jio Bindas. Awesome. Radio Olive par aane wala gaana cool song of the hour.
2: Kya baat hai sir, kya baat, ye baat hai. Awesome.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
3: मिल्क चीज योगर्ट लवली
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट

0: Danisha.
1: क्रिश और किशोर की आवाज में बहुत ही कमाल का गाना क्रेजी वायरल हो गया था इंस्टाग्राम पे. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स पर. रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज. एकदम आसान से सवाल लेकर आई हूँ आज मैं ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में. द क्वेश्चन इज विच लेटर फ्रॉम द अल्फाबेट इज अ ड्रिंक. जी, ऐसा कौन सा लेटर है अल्फाबेट में जो कि एक ड्रिंक भी है, ये बताना है आपने मुझे. 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. विच लेटर फ्रॉम अल्फाबेट इज अ ड्रिंक. सोचिए बस ऐसे आप वो लेटर बोलें एंड इट इज अ ड्रिंक. या टेल मी विच वन इट इज. 3311063 पर सेंडिंग फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर. और कुछ ही देर में लौट कर आती हूँ, एक बहुत जरूरी बात भी करनी है मुझे आपसे. सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: 106.3 FM दनीशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर एंड इस्तियाक अंसारी जी का मैसेज आया है मुझे गुड मॉर्निंग सिमरन सिमरन नहीं है सिमरन गई है छुट्टी पे एंजॉय कर रही है इस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ दिस इज तनीषा विद यू एंड कुछ ही देर पहले मैंने सवाल पूछा था ब्लैक बोर्ड स्टोरीज का
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज
0: And the question was, which letter in the alphabet is a drink? And I have good answers over here and the correct ones. Yes, मुझे मूर्ति जी का मैसेज आया है मुझे जॉली थॉमस का मैसेज आया है along with that मुझे जस्सा जी और सैफ जी का गुड मॉर्निंग भी आया है जो कि मैं पढ़ना भूल गई थी पहले देन एक और नाम जिसपे सिर्फ मुझे इमोजीज नजर आ रहे हैं मतलब नाम नहीं है देन मुझे ताज का मैसेज आया है एंड नुपुर इज देयर नैन का मैसेज है और एमी का मैसेज है एंड यस द करेक्ट आंसर इज टी माय फेवरेट ड्रिंक मतलब चाय के लिए मैं इतनी ज़्यादा क्रेजी हूँ ना सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ चाय चाहिए उसके बाद आई कैन फंक्शन एंड पीपल हैव सीन हियर कि मुझे आप आधी रात को उठा के बोल रहे थे शायद चाय पिएगी क्या आई विल से यस मैं कितनी भी नींद में हूँ मैं हाँ बोल दूंगी और मुझे नहीं फर्क पड़ता मुझे दोबारा नींद आ जाती है अदरवाइज पीपल हैव दिस प्रॉब्लम ना कि रात को चाय और कॉफ़ी पी ले तो फिर नींद नहीं आती पूरी रात I am immune to that. Chum, kiss it, daddy, body. Touching on your body while you're pushing on me. Don't you win the party, I can do this all. Ed Sheeran ne jo ye kamaal kiya tha, bahut hi khoobsurat gaana tha yaar. जसलीन रॉयल और अरिजीत सिंह की आवाज में हीरिए एंड K3G से ये वाला आई थिंक हम सबको ना लाइफ में पू एनर्जी रखनी चाहिए यू नो बी सेल्फ ऑब्सेस्ड मतलब खुद से इतनी मोहब्बत करो कि किसी और की जरूरत ही ना पड़े दिल से मूवी से टाइटल ट्रैक और कॉकटेल दी ओजी बंधु And gee, all these amazing tracks are lined up for you in this hour. So, Radio Olive 106.3 FM. Gio, Bindas, Meri Jaan.

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है कैसे समझाऊं इस लड़के को
5: सुबह शाम बस यही टेंशन बच्चों को लेक्चर नहीं हम देंगे फुल ऑन फन बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब
4: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से
5: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
4: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज
5: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर
4: Brought to you by Riyadhar Medical Center.
6: JCI Accredited Riyadhar Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
7: Visit Riyadhar Medical Center on Searing Road, Doha.
4: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
8: Hi everyone, this is Benny Dayal here.
9: Benny Dayal here.
8: Olive Radio 106.3. Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में। मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।
3: यो

0: अरिजीत सिंह और एड शीरन की आवाज में से फायर ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम दिनेशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है अब The answer is absolutely no, but it is still better than yesterday. It was crazy yesterday. So, filhal temperature is 34 degrees and it feels like 42 degrees as usual. Aadat si ho chuki hai hame, hai na? Aatif Aslam wala gaana imagine karo. Main gaungi to aap bhag jaoge, isliye I will not take that risk. Baaki med department ne kaha hai ki 1st aur 2nd September ko, bhai September aa gaya yaar. Kaise bhag raha hai ye saal? Crazy nahi? Coming back to September, yeah. सो ट्यूसडे वेंसडे को जो हवाएं हैं वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से चलेंगी सो यू नो विजिबिलिटी हैम्पर हो सकती है बिकॉज इट माइट गेट डस्टी सो अपना ख्याल रखिएगा वाइल ड्राइविंग ठीक है ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है फ़ोन वोन यूज़ नहीं करना है डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है आप इम्पॉर्टेंट है अपना ख्याल रखा करो समझ रहे हो बात को हाँ जी वेरी गुड फिलहाल एक गुड मॉर्निंग भेज दो क्या कर रहे हो बता दो 3311106 पर ये भी बता सकते हो कहाँ से सुन रहे हो एंड ऑल्सो If like you're, you know, listening in your car and you happen to make a story of it and put it on your socials, to Radio Olive ko tag karna bilkul nahi bhulna, theek hai? Aur sunte rahiye Radio Olive 106.3 FM. Jiyo, bindaas meri jaan.
1: Ab suniye, Olive ka zabardast hit. Zabardast hit.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-56123.
1: सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा
1: द वेट इज फाइनली ओवर

Tanisha. मैं तनीषा, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. K3G से दीवाना है देखो भाई पू. एनर्जी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन लाइफ, बता चुकी हूँ मैं. और मैंने सोच लिया है कि आई एम गोना डू दिस टू, यू नो, आई एम गोना कैरी दिस पू एनर्जी अभी बच्चे में पूरे साल में. बहुत हो गया. वेल, आई वॉन्टेड टू रिमाइंड यू ऑफ समथिंग. अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लो अपने बच्चों को रजिस्टर फॉर अनदर फन फिल्ड बैक टू स्कूल इवेंट. यस, ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क और रियादा मेडिकल सेंटर आपके लिए लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब. ये होने वाला है 4th of September को रियादा मेडिकल सेंटर में, सुबह 9 से 11 बजे तक. छुट्टी वाला दिन है तो कोई स्ट्रेस नहीं है कि कैसे मैनेज होगा. एंड यू नो, फटाफट से अपने बच्चों को रजिस्टर कर लो. बहुत लिमिटेड स्पॉट्स हैं इसमें. द नंबर इज 3311-1063 और रजिस्टर करने के लिए आपने लिखना है OR स्पेस आपके बच्चे का नाम, OR space bachche ka naam 2331111063, and we will give you a confirmation call. And you know, fir milte hain 4th of September ko, this Friday jo aane wala hai, subah 9 se 11 baje, Riyada Medical Center mein. So it will be, you know, basically about health and hygiene, par ekdam fun tarike se seekhenge. बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि जो एक्टिविटीज़ प्लान्ड है इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है एंड हमें भी मज़ा आएगा. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन. फटाफट से रजिस्टर कर दो, फिर कहना नहीं कि तनीषा ने बताया नहीं था. ठीक है, और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath Bindaas Mornings chal raha hai yahan par. Mujhe SK ji ka message aaya hai. Hi, good morning, beautiful Tanisha. Oi, hoi, thank you. Saath mein unhone kaha hai, faith is the invisible thread that connects our present struggles to an unseen hope. And that is so beautiful. Well, ek study padhi hai maine, jisme kehte hain ki jo friends aapke aapko bahut roast karte hain aur you know aapka bahut mazak udate hain, playfully aapka fun banate hain, wo 300% ज़्यादा loyal और honest होते हैं आपके लिए. And I kind of agree with this. I am that kind of friend कि अगर आप मुझसे कोई honest opinion मांगोगे तो मैं बिना sugarcoat किए आपको दे दूँगी. Because you know I am your friend. I am supposed to think about your well-being. तो अगर कोई चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है तो मैं honestly नहीं बता पा रही हूँ वो चीज़, तो फिर यार क्या रिश्ता है फिर ये? What kind of friendship? ये तो friendship of convenience होगी ना कि सिर्फ अच्छा अच्छा ही बोल रही हूँ मैं आपके लिए. That's not right. So I absolutely agree with this study. आपका क्या कहना है? Obviously, you know, making fun and disrespecting are two different things. वो बिल्कुल acceptable नहीं है. But it is reciprocable also, ना? वो आपका मजाक उड़ाए, आप उनका मजाक उड़ाए. So it's a fun banter. आपका क्या opinion है इसके बारे में? ये बताइए और सुनते रहिए Radio Olive. Trio Bindaas.

0: सुनो,
1: आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी।

0: दस मॉर्निंग आरज तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी।

0: सुबह शाम बस यही टेंशन. बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन. बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से.
0: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज.
0: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर.
1: Brought to you by Riyadha Medical Center.
2: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
4: Hi guys, this is Bharat Shetty Khurana and you are listening to Radio Olympic.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha hai aapke saath. Bahut hi khoobsurat gaana suna aapne KK aur Sonal Chauhan ki awaaz mein. Kaise batau tujhe? From the movie 3G. Par bade heavy heart se mujhe aapko batana pad raha hai ki ye jo F1 hone wala hai uski jo paddock club hai uski side ticket sold out ho chuki hai. Ji haan. If you were planning to buy that, crazy expensive it was and 3 din ke liye it was open and it is all sold out. Lekin abhi bhi you know general admission is still there. Grandstand bhi hai to uske liye aap tickets buy kar sakte hain. Aapne Lucille International Circuit ki website par jana hai, wahan jaakar you can buy the tickets. Fir baad mein aise hoga ki yaar nahi mili, late ho gaya, sold out ho gaya. You know it's absolutely crazy and people love it. Formula 1 Qatar Airway Qatar Grand Prix jo ki hone wala hai 27 se lekar 29th November tak Lucille International Circuit mein, and it is an experience yaar. बहुत ही मज़ेदार होता है. I have experienced it. That's why I'm telling you. So, अगर आपने नहीं किया है और every time you do, तो मौका है फटाफट से जाओ और अपने tickets ले लो. कहते तो कहने दो. कितना नॉनसेंस गाना है. आई एंजॉय दिस अ लॉट. इश्क वाला दर्द हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ. इश्क व्हाट इज इश्क वाला लव दो डू यू नो. प्लीज मुझे भी बताइएगा. माही आ मेरे माही जानी आ दिल जानी कितना सोना तू सोना. This is to such a beautiful track. ये सब आने वाले हैं इस घंटे में आपके लिए. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव त्रिवेंद्रम. Awesome. Radio Olive Pad. Aane wala gana. Cool song of the hour.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लेबनी एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Tanisha. Beautiful drive from the movie Chorne Nikal Ke Bhaga only on Radio 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas morning chal raha hai yahan par aur ek bahut hi kamal ki cheez mujhe mili hai. So you know kabhi bhi hum road trip ke liye agar ja rahe hain, I absolutely enjoy road trips and you know ye jo cheez main batane wali hu ye duniya ke kisi bhi kone mein aap jaye road trip ke liye aapko kaam aa sakti hai. So there is this website called furkot.com, FURKOT. ओके वहाँ पर आप जाकर अपना यू नो जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं और जो आपका डेस्टिनेशन है वो डाल दें. उस बीच में रास्ते में कितने स्टॉप्स हैं, कहाँ आप खाना खा सकते हैं, कहाँ आप स्टे कर सकते हैं, कौन से यू नो ऐसे सीनिक प्लेसेस हैं जो आपको देखना चाहिए, टूरिस्टी स्पॉट्स, आपको नेशनल पार्क चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट यू नो उस रास्ते के बीच में वो आपको सारी लिस्ट दे देगा, वो आपकी रोड ट्रिप प्लान कर देगा. ब्रो दिस इज सो कूल एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग यू नो ऐसे ढूंढ के मैं देख रही थी और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें वो मुझे ढूंढ के निकाल के दे रहा था. सो आई वॉज रियली एक्साइटेड अबाउट इट. सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी रोड ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो ट्राई यूजिंग दिस furkot.com एंड इट विल मेक थिंग्स इजियर फॉर यू.
0: रेडियो

क्रिएशन। जी हाँ, द नंबर इज 3311063। इस पे आप अपनी क्रिएशन भेज सकते हैं एंड फटाफट से जाइए हमारे सोशल मीडिया पर, radioalive.qa इज द हैंडल। वहां पे कॉन्टेस्ट ऑलरेडी पोस्ट कर दिया गया है, उसमें जाकर आपने एक छोटी सी चीज और करनी है, दैट यू हैव टू गो एंड फॉलो रेडियो ऑलिव। अगर आप ऑलरेडी कर रहे तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे तो फटाफट से कर लो। एंड ऑल्सो फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ और अपना जो अपसाइकल स्कूल आइटम है वो व्हाट्सएप करना है आपने 3311063 पर। एंड इसका डेडलाइन है 15th of September। किड्स बिटवीन 8 to 12 का एज इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो भी 5 मोस्ट क्रिएटिव हीरोज होंगे दे विल विन बैक टू स्कूल बॉक्स वर्थ 299 रियाल ईच। यस, तो ये बढ़िया सा मजेदार मौका हाथी जाने मत दो, फटाफट से लग जाओ थिंक क्रिएट एंड ट्रांसफॉर्म और बन जाओ अपसाइकल हीरो। स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास मेरी जान।

डीडीएलजे से लता ताई और कुमार सानू साहब की आवाज में तुझे देखा तो ये जाना सुना ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन योर रेडियो 106.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। एंड ट्विटर किस किस को याद है जो कि अब एक्स बन चुका है। सो क्रेजी बवाल हो जाता था भाई किसी के एक ट्वीट से, यू नो इट बिकम्स द हेडलाइंस ऑफ ऑल द न्यूज पेपर। सारे न्यूज चैनल्स भी उसी के बारे में बात कर रहे होते थे। बट गॉन आर दोज डेज हैं। अभी इंस्टाग्राम स्टोरीज ये काम करिए, लेकिन यू नेवर नो इट माइट कम बैक बिकॉज देर

0: a new platform which is twitter.now. Yes, जो previous lawyer थे, you know, Twitter platform के लिए जिन्होंने legal fight किया था for the name actually, वो Elon Musk ने उसको own नहीं किया है. So वो trademark उसने, उन्होंने जो former lawyer थे उन्होंने ले लिया है, and he has opened this new platform called twitter.now, जो कि same, you know, पुराना वाला जो Twitter था उसका experience देगा आपको, and very short post conversations and you know open and fast moving feel जो Twitter का main adjective होता था वो लेकर आने की कोशिश है. There will be a few changes, obviously AI बहुत जोर शोर से use होगा उसमें, पूरा platform ही उसी के basis पर बना है. थोड़े बहुत चेंजेस होंगे बट कोशिश यही है कि पुरानी वाली फील लेकर आए. सो जो भी एविड ट्विटर यूज़र थे उनके लिए तो ये खुशी की बात है. मैंने तो तब भी लाइक पोस्टिंग्स तो नहीं की थी, बट आई वुड जस्ट यू नो रैंडमली गो एंड चेक आउट ट्वीट्स, एंड इट यूज टू बी फन, एक्चुअली वेरी फन, और काफ़ी अतरंगी चीज़ें वहाँ पर मिलती थी मुझे. सो या आई विल ट्राई इट. आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो कि यू नो क्रेजीली ट्विटर को यूज़ करते थे, बताएं मुझे 3311106 पर. एंड स्टेट ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: 一下，等一下。
1: मैं हूं मूवीज से बहुत ही कमाल का गाना यॉल लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहां पर रिमाइंडर इफ यू हैवंट फटाफट से अपने बच्चों को रजिस्टर कर दीजिए जी सो बैक टू स्कूल लेकर आए हैं रियादा मेडिकल सेंटर और ऑल सुनो रेडियो नेटवर्क आपके लिए दिस वन इज फोकस्ड ऑन हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द किड्स यू नो द गुड हैबिट्स दे शुड फॉलो एंड इट विल बी सो मच फन क्योंकि जो एक्टिविटीज प्लान्ड है बहुत मजेदार हैं 4th ऑफ सितंबर को यह होने वाला है बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब रियादा मेडिकल सेंटर में सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और छुट्टी वाला दिन है तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं है कि कैसे चीजें मैनेज होंगी बस आपने रजिस्टर कर देना है अपने बच्चे को द नंबर इज 3311063 स्पेस बच्चे का नाम लिखें और भेज दीजिए मुझे और रजिस्ट्रेशन डन कर दीजिए ठीक है बहुत लिमिटेड स्पॉट्स हैं तो ज्यादा वक्त ना लगाएं क्योंकि जल्दी रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाले हैं और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM जियो बिंदास मेरी जान

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, आई एम राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

अच्छा जी, ठीक है। शान और सुनील चौहान की आवाज में कोई आप सब मूवी से आदत हो चुकी है तेरी। You're listening to Radio 11.6.3 FM, Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं। यहाँ पर 9:50 हो चुका है क्लॉक में और वक्त हो गया मेरे जाने का। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। आप अपना ख्याल रखिएगा। हैव एन अमेजिंग डे टू योर सेल्फ। यू नो, स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना है, छोटी छोटी चीज़ों का जाने दो यार, ठीक है। एंड इफ़ यू हैवेंट, अपने बच्चे को रजिस्टर कर लीजिए बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब के लिए, जो कि 4th of September को रियादा मेडिकल सेंटर में हो रहा है। यू हैव टू सेंड अ टेक्स्ट OR स्पेस बच्चे का नाम 2331111063। हाँ जी। एंड इफ़ यू हैवेंट, हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर लो। कॉन्टेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं, फिलहाल भी चल रहा है, पार्टिसिपेट कर लो, बढ़िया बढ़िया चीज़ें जीतने का मौका है आपके पास। बाकी हैव एन अमेजिंग डे टू योर सेल्फ। अपना ख्याल रखें, स्टे हाइड्रेटेड, लाइट खाना खाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें मेरी जान। और सुनते रहें रेडियो 11.6.3 FM, जियो बिंदास।

0: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर।

गुड मॉर्निंग। अगस्त खत्म होने के लिए बस आज का दिन बाकी है। सितंबर दरवाजे पर खड़ा है और मुझे लगता है कि सितंबर एक ऐसा मंथ है जिसका कोई फिक्स पर्सनालिटी नहीं होता। ना कोई प्रॉपर समर है, ना प्रॉपर विंटर है, ना कम्प्लीटली हॉलीडे मूड है, ना कम्प्लीटली वर्क मूड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सितंबर फील्स लाइक अ रीसेट। जनवरी में हम रिजोल्यूशंस बना रहे हैं, सितंबर में लाइफ एक्चुअली रीसेट होने लगती है। स्कूल्स रीओपन हो गए हैं, वर्क रूटीन सेटल होते हैं, वेदर धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, इवेंट का कैलेंडर जो है वो सडनली बिजी होने लगता है, और शायद इसीलिए सितंबर की साइकोलॉजिकल न्यू बिगनिंग जैसा फील होता है। सो बस आज अगस्त का लास्ट डे है और कल जो है नई बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर सितंबर को आप अपनी लाइफ का फ्रेश चैप्टर बना सकते हो तो क्या चेंज करना चाहोगे? कोई जॉब, कोई रूटीन, कोई फिटनेस, या फिर कोई रिलेशनशिप, या बस अपना स्लीपिंग स्केड्यूल? लाइक मी, व्हाट्सएप पे मुझे एक फटाफट से मैसेज भेजो सितंबर में।

आप क्या चेंज करना चाहोगे। 3311063 इज माई नंबर। देखते हैं कतर का सितंबर एक्चुअली कितना डिफरेंट होने वाला है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM। दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है लाइफ मस्त है।

0: Check. Time check. Brought to you by Dhanat Al-Fahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al-Khor.
1: सुनो
2: आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है
3: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा
2: द वेट इज फाइनली ओवर

0: सो कतर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल सामने आई है. सो कल ही यहाँ पर एक नई डिजिटल सर्विसेज एप्लीकेशन लॉन्च हुई जिसका नाम था मिश्का. प्लेटफॉर्म पर 50 से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज हैं जहाँ पर अब नॉर्मली हम इसको सिंपली बोलेंगे कि अच्छा एक और गवर्नमेंट ऐप आ गया. बट वेट, इसके पीछे एक्चुअली एक बड़ा चेंज है. पहले गवर्नमेंट सर्विसेज का मतलब था ऑफिस जाना, फॉर्म फिल करना, क्यू में लगे रहना और फिर वेबसाइट आई. अब स्मार्टफोन्स आ गए हैं और नेक्स्ट स्टेप क्या है, गवर्नमेंट सर्विसेज बिकमिंग इनविजिबल. आपको ये भी फील नहीं होगा कि आपने गवर्नमेंट सर्विसेज यूज किए हैं, बस फोन खोला, काम किया और खत्म. टेक्नोलॉजी का रियल सक्सेस शायद ये नहीं है कि उसमें कितने फीचर्स हैं, रियल सक्सेस इज कि क्या उसमें किसी इंसान का एक अननेसेसरी ट्रिप, एक क्यू या फिर एक सक्सेसफुल आफ्टरनून सेव किया या नहीं. और यही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का इंटरेस्टिंग साइड है. टेक्नोलॉजी तब यूजफुल हो जाती है जब ह्यूमन एफर्ट्स जो है वो कम लगे, ह्यूमन कनेक्शन नहीं हो. और आप मुझे बताओ कि आपकी लाइफ का वो कौन सा एक काम है जो आप चाहे आप चाहते हो कि मतलब कंप्लीटली डिजिटल हो जाए. व्हाट्सएप पे बताओ, दे कैन ऑल्सो वर्क ऑन दैट ऑल्सो. आप मुझे बताओ 3311063 पर कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो लाइफ को और आसान बना सकती है.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

सो कल जो है सितंबर का फर्स्ट डेट है और कल और परसों कहा जा रहा है कि जो हवाएं हैं वो तेज होंगी और कंडीशंस जो है वो काफी विंडी और डस्टी हो सकती है, मतलब सितंबर की एंट्री थोड़ी सी ड्रामेटिक हो सकती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात भी है, वेदर सिर्फ हमारे कपड़े नहीं बदलता, इट चेंजेस आर बिहेवियर ऑल्सो। टेम्परेचर हाई हो तो हम इंडोर प्लान्स बनाते हैं, इवनिंग थोड़ी प्लेजेंट हो तो सडनली वॉक या कॉफी के प्लान बन जाते हैं, बारिश हो तो चाय का टेस्ट बेटर लगने लगता है और डस्टी डे बस कार वॉश करने का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। सो साइकोलॉजी में एनवायरमेंट का और मूड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सीरियसली स्टडी किया जाता है। लाइट, टेम्परेचर, सीजन और सराउंडिंग्स हमारी एक्टिविटी और मूड को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए कभी कभी हम बोलते हैं कि आज मूड ही नहीं है और शायद मूड का आधा रीजन हम नहीं एनवायरमेंट होता है। सो यू टेल मी, आपको परफेक्ट मूड किस वेदर में एक्टिवेट होता है, बारिश में, थोड़ी ठंडी हवाओं में, सनी डे या फिर विंडी डे? व्हाट्सएप पर बताओ मुझे 3311063 पर विच इज योर परफेक्ट वेदर। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट

0: सो दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर F1 फैंस. फॉर्मूला 1 कतर एयरवेज जो है इस टाइम पर 2026 का जो क्लब है वो ऑफिशियली मतलब पूरे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं. सो 27th से 29th ऑफ नवंबर 2026 को लुसेल इंटरनेशनल सर्किट में होने वाला है ये. और द सर्किट इज 5.42 किलोमीटर लॉन्ग विद 16 टर्न्स एंड कतर इज होस्टिंग द यू नो रेस ऑफ द 2026 सीजन. लेकिन मुझे फॉर्मूला 1 का एक कॉन्सेप्ट है जो लाइफ से बहुत रिलेट करता हुआ लगता है, विच इज स्पीड. हमारी जनरेशन ना बहुत ऑब्सेस्ड है, मतलब एकदम स्पीड से फास्ट प्रमोशन चाहिए, फास्ट मनी, फास्ट रिप्लाइज, फास्ट रिलेशनशिप्स और फास्ट सक्सेस. लेकिन फॉर्मूला 1 में सिर्फ फास्टेस्ट कार जीत नहीं जाती. स्ट्रैटेजी मैटर करती है, टायर्स मैटर करते हैं, टाइमिंग मैटर करती है और उसके बाद स्टॉप जो एक सेकंड का होता है वो भी मैटर करता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट, ड्राइवर को पता होना चाहिए कि कब एक्सेलरेट करना है और कब स्लो डाउन. सो लाइफ में शायद एग्जैक्टली यही है कि हर वक्त एक्सेलरेटर दबाए रखोगे तो इंजन भी हीट होगा और जर्नी भी एग्जॉस्टिंग हो जाएगी. सो कभी कभी स्लो होना फेलियर नहीं होता, इट इज़ अ स्ट्रैटेजी. सो आज का व्हाट्सएप क्वेश्चन ये है कि आप लाइफ में क्या हो, फुल स्पीड पर या फिर राइट स्पीड पर? 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर.

सो यार एक बहुत ही अच्छा थॉट प्रोवोकिंग डेवलपमेंट कतर में फैमिली और वर्क प्लेस के रिलेशनशिप को लेकर सामने आया है. आपने कनेक्ट टू योर किड्स कैंपेन के कॉन्टेक्स्ट में कतर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके लिए 10 घंटे पर मंथ वाली इन्फॉर्मेशन देखी होगी. अब नंबर्स को साइड में रखकर बिगर क्वेश्चन देखिए. यहाँ पर हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेडिशनली कैसे डिफाइन करते हैं, डेजिग्नेशन, सैलरी, परफॉर्मेंसेस और टारगेट्स पे. लेकिन एम्प्लॉई घर जाकर क्या है? एक ऑफकोर्स फादर है, एक डॉटर है, एक हस्बैंड है, वाइफ है, पेरेंट है और मे बी केयर गिवर है. सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्ट है. एंड वर्क प्लेस पॉलिसीज जब रियलिटी को एक्नॉलेज करती हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस एक मोटिवेशनल पोस्टर से निकल कर एक्चुअल पॉलिसी बनने लगता है. सो बिकॉज समटाइम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफ द डे इज नॉट ऑन टीम्स. आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं. Sometimes the most important appointment it's not professional, it's you know your parent appointment. So मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 10 घंटे extra hours हैं purely family के लिए ये कितना कुछ चेंज करने वाले हैं. सो यू टेल मी कि अगर आपको ये 10 एक्स्ट्रा आवर्स प्योरली फैमिली के लिए मिल जाएं तो आप उसे किस के लिए यूज़ करोगे? अपने फादर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, या फिर यू नो अपने बच्चों के लिए या उनकी स्कूल मीटिंग्स के लिए? कब और कैसे यूज़ करना चाहोगे? 3311106 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ स्टेट यून जियो बिंदास.

0: आगे तेरे पीछे, बावरा समन, बावरा समन।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: सो देर वॉज अ टाइम 1990s में, मतलब जितने भी कपल्स आज आप देखोगे उस टाइम के, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं या आपके अंकल आंटीज हैं, वो कैसे मिले हैं? या तो किसी रिश्ता आंटी से, या फिर किसी शादी में, या फिर किसी नोन से, ऐसे रिलेशनशिप्स जो हैं वो बनाए जाते थे. लेकिन आज अगर मैं 2026 की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च आ चुकी है. टाइम था इंडिया में जब रिश्ता आंटी बोली जाती थी, बेटा एक लड़का है बहुत बढ़िया है, और आज एल्गोरिदम बोलता है कि यू मे लाइक ईच अदर, राइट? सो ऑनेस्टली टेक्नोलॉजी हैज completely changed the way people meet. Stanford researchers ने ये ढूंढा था कि US में online meetings जो हैं वो ज़्यादा common हो गई हैं. लोग friends के थ्रू पहले मिला करते थे in 2020 की अगर मैं बात करूँ, like 5-6 साल पहले भी. अब धीरे धीरे धीरे धीरे हर कोई algorithm से मिल रहा है, smartphones, app और basically online. So basically रिश्तों में जो middleman है वो change हो गया है. पहले friends बना करते थे और उसके बाद फिर uncle auntie और फिर बाकी के रिश्तेदार दार, और अब धीरे धीरे ये सब एल्गोरिदम से हो रहा है. सो आई वॉज थिंकिंग कि कैसे ये केमिस्ट्री बनती है, बिकॉज केमिस्ट्री इज वियर्ड, राइट? कभी पर्सन कंप्लीटली ऑपोजिट होता है फिर भी कनेक्शन हो जाता है, और कभी प्रोफाइल परफेक्ट होती है और सामने मिलकर लगता है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं. सो टेल मी ऑनेस्टली, वुड यू ट्रस्ट इन एल्गोरिदम टू चूज योर पार्टनर, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार, ये जो रिश्ते कराने वाले जो लोग होते हैं ना, जो दोस्त होते हैं आपको किसी से मिलवाते हैं, या फिर कुछ फैमिलीज हैं जो आपको एक दूसरे से मिलवाती हैं, वो ज़्यादा बेटर है? सो टेल मी व्हाट्सएप पे, एल्गोरिदम वर्सेस रिश्ता आंटी. 311-1063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio Bindas.
1: Awesome. Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: Song of the hour. Kya baat hai sir? Kya par ye baat hai? Awesome.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट नाउ ओपन एट ऑल पास

निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

So this is particularly for parents. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai Life Must Hai. So Radio Olive aur Riyada Medical Center lekar aa rahe hai Back to School Junior Care Club. 4th of September ko, yani ki kal pehli tarikh hai, aur 4 tarikh ko ye hone wala hai, subha 9 se 11 baje tak Riyada Medical Center mein. Age group hai 7 to 10 years. Theme hai Health, Hygiene and Wellness. Lekin फॉर्मेट बच्चों के लिए फन रखा गया है, गेम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, लर्निंग है, एंड मुझे लगता है कि यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों के लिए, वो लोगों से मिले, दूसरे नए बच्चों से मिले, एक्टिविटीज़ करें. सो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको व्हाट्सएप करना है OR प्लस आपके बच्चे का नाम, एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ 3311063. और मुझे इस इवेंट का कॉन्सेप्ट इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि बच्चों को हेल्थ के बारे में सिर्फ लेक्चर देना यूजुअली काम नहीं करता. आप बच्चों को बोलोगे ब्रश ट्वाइस अ डे, बच्चा बोलेगा ओके, पर आप उसे गेम बना दो. मतलब कौन हाइजीन को लेकर सुपर हीरो बन सकता, और सडनली बच्चे ना अपना नाम लेना स्टार्ट कर देते हैं. सो बच्चे यूजुअली ऐसे ही सीखते हैं, उनके लिए लर्निंग्स का मतलब ही यही है कि पार्टिसिपेशन रेदर देन पनिशमेंट्स. सो आई विल से कि अगर आप पेरेंट हो, आपको लगता है कि आपके बच्चों के लिए वीकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हेल्दी हैबिट्स सिखाने का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है, ब्रशिंग, स्लीपिंग अर्ली, हेल्दी फूड या फिर स्क्रीन टाइम? व्हाट्सएप करके बताओ, और साथ ही साथ फटाफट से रजिस्ट्रेशन के लिए टाइप करो OR स्पेस आपके बच्चे का नाम एंड सेंड इट टू 3311063. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट।

0: मैं इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक ऑब्जर्वेशन था जो फनी लग सकता है लेकिन एक्चुअली में उसके बारे में सोचना चाहिए। जब हम छोटे थे तब हम आसपास ना सिर्फ कलर्स देखते थे, आज हम अपने आसपास देखते हैं तो ब्लैक व्हाइट ग्रे के अलावा कुछ नहीं दिखता। बिल्डिंग्स पूरी बेज है, फोन्स जो है वो म्यूटेड कलर के हैं, फैशन एकदम न्यूट्रल हो चुका है, मिनिमलिज्म हैज बिकम एस्पिरेशनल। सो याद कीजिए जब हम छोटे थे तो येलो कलर के शूज, ब्लू कलर का लंच बॉक्स, पिंक कलर का पेंसिल बॉक्स, ऐसे कलर्स लिया करते थे। अब चाहिए समथिंग सटल ऑलवेज, क्योंकि अडल्टहुड ऑफन रिवॉर्ड्स सेफ्टी। नेचुरल कलर्स जो है वो रिस्की नहीं लगते। ब्लैक चाहिए आपको क्योंकि हर जगह चल जाता है, ग्रे लुक्स सोफिस्टिकेटेड, बेज लुक्स एक्सपेंसिव, और कलर्स जो है ऐसे ही अच्छे लगते हैं क्योंकि हमें लगता है ये लंबे टाइम तक चलेंगे। बट मे बी इसीलिए फैशन में ब्राइट कलर्स कभी कभी ना सिर्फ फैशन ट्रेंड नहीं होता, दे आर अ लिटिल रिबेलियन अगेंस्ट बोरिंगनेस। तो आज का कंप्लीटली अननेसेसरी बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको कल से सिर्फ एक कलर पहनना हो तो कौन सा चूज करोगे? कई सारे लोग तो ब्लैक बोलने वाले हैं, पर प्लीज ब्लैक बोलना नहीं है यहाँ पे। आप मुझे बताओ कोई अच्छा सा कलर जो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ही प्यारा कलर है। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. Yeah, guys.

0: सो पूरे सितंबर और अक्टूबर में कतर में इवेंट्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कटारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फाल्कन एग्जीबिशन लगने वाला है 10th एडिशन 8 से 12 सितंबर तक कटारा जो कल्चरल विलेज है उसमें. और इसी के साथ और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जो होने वाले हैं. आई वॉज वंडरिंग कि भाई DVCC में भी एग्जीबिशन लगने वाला है इस महीने सेप्टेम्बर से अक्टूबर के लास्ट, मतलब अक्टूबर स्टार्टिंग है सेप्टेम्बर लास्ट में एग्जीबिशन जो है वो लेकर आने वाला है इंटरनेशनल लोकल ज्वेलरी एंड वॉचेस एंड डिजाइनर डिफरेंट डिफरेंट चीजें. सो ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन सेज कि टिपिकली अट्रैक्ट करता है 30,000 से ज्यादा विजिटर्स को और 500 से ज्यादा ब्रांड्स इसमें होते हैं. सो लास्ट ईयर तो मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें अटेंड की थी. सो दिस टाइम आई विल से कि आप भी मिस मत कीजिएगा, बड़े अच्छी अच्छी चीजें जो है यहाँ पे मिल जाती हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, कपड़े हो या वॉचेस हो. तो अगर आपको सडनली मैं आपसे कहूँ कि यार आपको एक बढ़िया सा ज्वेलरी वॉच या फैशन कुछ भी खरीदने का मौका मिल रहा है तो यू कैन गो एंड चेक आउट. सो मैं आपको सारी डिटेल्स जो है टाइम टू टाइम देती रहूंगी. बाय द वे आप मुझे बताओ, क्योंकि अब मौसम जो है वो धीरे धीरे बेटर होता जाएगा. कल से सितंबर है और कल से धीरे धीरे धीरे धीरे आप देखोगे कि अक्टूबर आते आते तक मौसम जो है वो फाइनली हमारे फेवर में आ जाएगा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. बताइए कि आपको इस मौसम में सबसे खूबसूरत क्या लगता है. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

So, कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ किताबें हम एक बार पढ़ के रख देते हैं और कुछ किताबें बार बार पढ़ने का मन करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम सेम बुक दोबारा पढ़ते हैं, स्टोरी तो सेम होती है लेकिन हम सेम नहीं होते। 18 साल की एज में जो कैरेक्टर अनॉइंग लगता है, 28 में सडनली रिलेटेबल लगने लगता है। जो लाइन पहले रोमांटिक लगी थी, कुछ साल बाद वो हार्ट ब्रेकिंग लग सकती है, क्योंकि समटाइम्स वी डोंट रीड अ बुक टू डिस्कवर अ स्टोरी, सो वी रीड इट डिस्कवर आवर सेल्फ। और शायद इसीलिए कम्फर्ट किताबें इतनी स्पेशल होती हैं। आज भी मुझे याद है मेरी वो पहली किताब जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया था। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है लाइफ मस्त है। सो आपको ना एंडिंग किताब आपकी पढ़ते से पहले मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि यार मुझे इस किताब से ये सीखने को मिला। बिल्कुल उस फेवरेट सॉन्ग की तरह होती हैं किताबें जिसके लिरिक्स आपको वर्ड टू वर्ड पता है फिर भी आप सुनते ज़रूर हो। तो आज का क्वेश्चन है बुक लवर्स के लिए, कौन सी किताब आपने एक से ज़्यादा बार पढ़ी है और हर बार उसे कुछ नया सीखने को आपको मिला है। व्हाट्सएप पे बताओ, 3311063 इज़ माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा
1: द वेट इज फाइनली ओवर

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद

और एंड में एक थॉट लेकर आई हूँ। आज हम सब बिजी हैं, बिजी हूँ, बहुत काम है, टाइम नहीं है, ये ऑलमोस्ट मॉडर्न स्टेटस सिंबल बन चुका है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है लाइफ मस्ट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, डिस्कशन के लिए बिजी मतलब प्रोडक्टिव होना ऐसा नहीं है। आप 10 घंटे फोन और लैपटॉप के सामने हो सकते हो और फिर भी एक्चुअल इंपॉर्टेंट काम जीरो, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट हाउ मच टाइम यू स्पेंड, इट्स अबाउट वेयर यू अटेंशन गोज एक्चुअली, वेयर योर अटेंशन एक्चुअली। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने सिस्टम के आगे बैठी हूँ, काम करने की कोशिश कर रही हूँ, पर फोन जो है मैसेज बज रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं और मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हूँ। सो इमेजिन आपके पास एक दिन में 24 घंटे नहीं, सिर्फ 100 अटेंशन कॉइन्स हैं। आप कितने कॉइन्स इंस्टाग्राम को दोगे, कितना काम करोगे और कितनी फैमिली को कॉइन्स दोगे, कितने हेल्थ को दोगे और कितने खुद को। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे पास टाइम कम है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपना अटेंशन छोटी छोटी चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर रात को लगता है कि पता नहीं पूरा दिन कहाँ गया। सो आज एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपना फ़ोन खोलो, स्क्रीन टाइम चेक करो और व्हाट्सएप पे मुझे सिर्फ एक नंबर भेजो, नो एक्सप्लेनेशन, नो शेम, सिर्फ माई स्क्रीन टाइम टूडे इज दैट्स इट। नंबर है 3311063। फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा। बाय द वे मेरा भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था, बट मैंने उसे धीरे धीरे कवर किया और कम भी कर दिया। सो नाउ इट्स योर टर्न, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: स्कूल्स खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
1: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
0: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
1: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
2: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
4: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
5: गुलराज सिंह
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
5: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
1: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
2: मधुर नैनी नार अलब

0: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: कुछ करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को।
1: उफ, सुबह शाम बस यही टेंशन। बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
0: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
1: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
0: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
1: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
0: Brought to you by Riyadha Medical Center.
2: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
0: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

पल पल में शामिल है। वो कौन है जो मेरी मंजिल है? वो कौन है जिसे मैं

आप सभी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और चलिए शुरू करते हैं किक स्टार्ट करते हैं ऑलिव रिचार्ज को। यहां पे हम तीन घंटे आपके साथ बैठ के बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं आज का ऑलिव रिचार्ज और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है. आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि आज 31 अगस्त है. आप सोच रहे होंगे कि वाह क्या नया इन्फॉर्मेशन दिया है आपने. नहीं ऐसी बात नहीं है. अगस्त खत्म होने वाला है मगर अगस्त जो है काफी कूल महीना है पूरे वर्ल्ड के लिए. एक ऐसा इनोवेशन जो है 1914 में अगस्त से यूज करना शुरू किया गया था. कौन सा है वो इनोवेशन आप सोच रहे हो ना. अगर आप अभी सिग्नल में खड़े हो तो सिग्नल की ओर जरा देखो. वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले 1914 में ओहायो क्लीवलैंड में यूज करना शुरू किया था अगस्त के महीने में. एग्जैक्ट डेट जो है 5th अगस्त है. बट अगस्त खत्म होने से पहले अगस्त के बारे में मैंने सोचा एक कूल बात में बता दूं. ऑल्दो यहाँ पे अगस्त थोड़ा गर्म है गर्मी ज्यादा है. बट या गर्मी ज्यादा है तो अपना ख्याल रखिए, पानी पिए और कहते रहिए जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भाई रियादा मेडिकल सेंटर में 4 सितंबर को एक बहुत ही बढ़िया इवेंट होने वाला है। बच्चों के साथ आप चिल कर सकते हैं। स्कूल जो है धीरे धीरे बच्चे जाना शुरू करेंगे, मगर बच्चों के लिए स्कूल के साथ साथ केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन है जो सिखाना चाहिए, और यही होने वाला है रियादा मेडिकल सेंटर में 4 सितंबर को। तो आप उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने बच्चों को। तो आपको करना क्या है, आपको हमें मैसेज करना है OR स्पेस अपने बच्चे का नाम और हमें भेज देना है 3311063 पर। तो तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी आप हमें मैसेज कीजिए और रजिस्टर कीजिए। और यही बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है. आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. कहते हैं कि अगर एक चीज को आप 10,000 आवर्स प्रैक्टिस करो तो आप उसमें माहिर बन जाओगे. 10,000 आवर्स ये बहुत बड़ा टाइम होता है, और 10,000 आवर्स किसी भी स्किल में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सपर्ट लेवल तक जा सकते हो. कहा जाता है मास्टरी जो है आप अचीव कर सकते हो, मगर एक चीज है जिसके इसमें मैं अभी तक मास्टरी नहीं अचीव कर पाया, वो है फिटेड शीट को फोल्ड करना ढंग से. नहीं हो पाया भाई, बहुत कोशिश कर ली है मैंने, घर पे कोशिश कर ली है, अपने अकोमोडेशन के यहाँ पे कोशिश कर ली है, मगर फिटेड शीट का कुछ जो एक हिसाब रहता है ना उसे फोल्ड करके रखने का, मेरे से नहीं हो पाया. बट कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम जितनी भी कोशिश करें हमसे नहीं हो पाती, ठीक है, हम खुद को ही एम्बेरस कर देते हैं. आपके लाइफ में ऐसा कुछ है जिसमें आपने बहुत कोशिश की है बट आप उतना इम्प्रूव नहीं कर पाए? अब जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ. मैथमेटिक्स, लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैथमेटिक्स हमारे पल्ले नहीं पड़ता. आपके लिए ऐसा कुछ है तो बताइए 3311063 पर मैसेज करके, और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: स्कूल खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
2: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
1: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
2: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
3: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।

0: स्कूल्स खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
1: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
0: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
1: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
2: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
3: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
4: Hi, this is Kailash Kher. And you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio All 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Jasmine Sandler aur Madhubanti Bagchi ki awaaz mein. Durender movie se shararat suna aapne. Aur shararaton ko kaise thoda sa useful bana sakte hain uske bare mein baat karte hain. So agar aapke paas koi old cardboard box hai ya fir uno koi empty bottle hai, newspaper hai and you can make something super useful out of it. So you can become a back to school upcycle hero. Yes, Planet Scribbles Gulf and रेडियो ऑलिव आपके लिए लेकर आया है अपसाइकिल हीरोज कॉन्टेस्ट और बहुत छोटा सा काम इसमें आपने करना है दैट इज यू हैव टू टेक वन वेस्ट आइटम और उसे एक यूजफुल स्कूल आइटम में आपको ट्रांसफॉर्म कर देना है और हमें भेजनी है आपकी वो क्रिएशन जी हाँ द नंबर इज 3311063 इस पे आप अपनी क्रिएशन भेज सकते हैं एंड फटाफट से जाइए हमारे सोशल मीडिया पर radioolive.qa इज द हैंडल वहां पे कॉन्टेस्ट ऑलरेडी पोस्ट कर दिया गया है उसमें जाकर आपने एक छोटी सी चीज और करनी है दैट यू हैव टू गो एंड फॉलो रेडियो ऑलिव अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड नहीं कर रहे तो फटाफट से कर लो एंड ऑल्सो फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स गल्फ और अपना जो अपसाइकल स्कूल आइटम है वो व्हाट्सएप करना
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट

0: सुबह शाम बस यही टेंशन. बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन. बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से.
0: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज.
0: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर.
1: Brought to you by Riyadha Medical Center.
2: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
3: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है. आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. और यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि देखिए आज मंडे है. आप फिर से सोचोगे कि वाह नया इन्फॉर्मेशन. हाँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है. मैं बता रहा हूँ, देखिए अपन लोगों को तो यहाँ पे सैटरडे से काम शुरू हो जाता है, ठीक है. कुछ लोगों का यहाँ पे संडे से काम शुरू हो जाता है, मगर मेरे जो दोस्त इंडिया में हैं उनका तो मंडे से काम शुरू होता है. और वो बेचारे लोग जो है मंडे ब्लूज बहुत एक्सपीरियंस करते हैं. तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई मंडे ब्लूज होता क्यों है, लोग क्या होता है, रीजन क्या होता है. तो थोड़ा मैंने ऐसे सोच सोच के एक पॉइंट जो है फिगर आउट किया है. अब वीकेंड में क्या होता है कि भाई इंसान जीता है ना, हम बाकी 5 दिन थोड़ा ना जीते, हम तो वीकेंड के दिन जीते हैं. तो वीकेंड के दिन जब हम जीते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से जीते हैं, या फिर सोते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से सोते हैं. तो इन दोनों दिनों में हम इतना फन कर लेते हैं कि बाद में इस मोनोटोनस रूटीन में वापस आना जो है ना, बॉडी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, माइंड भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता. तो धीरे धीरे हम ऐसे थोड़ा स्लगी फील करते हैं, थोड़ा बैड फील करते हैं यार, सुबह उठना है यार, ऑफिस जाना है यार. तो कैसे इस चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं? फंडा बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा. अपने ऑफिस को एक फन प्लेस बना के. आप अगर अपने ऑफिस को फन प्लेस बनाना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक चीज है आपके लिए. आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. जियो बिंदास.

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है. आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान. अगर एचआर मेरी बात सुन रहा है, मेरे ऑफिस के एचआर नहीं, बाकी ऑफिसर्स के एचआर मेरी बात सुन रहे हो, या फिर डिफरेंट बॉसेस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, आप मेरी बात सुन रहे हो, तो आपके लिए है ये बात. अगर आप अपने ऑफिस में एक बहुत ही फन फिल्ड एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हैं, जहां पे लोग चिल करें, मजे करें, बहुत ही बढ़िया तरीके से रिचार्ज होए और रीएनर्जाइज हो जाएं, तो फिर मैसेज भेजिए हमें 3311 1063 पर. आप HL स्पेस अपने कंपनी का नाम हमें भेज सकते हैं. मैं बात कर रहा हूं हैप्पीनेस लॉन्च की, जहां पे रेडियो ऑलिव की टीम जो है आपके ऑफिस में आएगी चिल करने के लिए, आपके एम्प्लॉयज के साथ फन करने के लिए, उनके मूड को थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए, उनको रिचार्ज और रीएनर्जाइज करने के लिए. और यही बात याद दिलाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: जब life मौका देगी, क्या करेगा? आने देगा? जाने देगा.

आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और आज मैं ऐसे लिफ्ट में खड़ा हुआ था तो एकदम से एक सर आए वहां पे। मैं पहली बार उनसे मिल रहा था, मुझे लगता है कोई गेस्ट थे, बट काफी एंथुजियास्टिक तरीके से वैसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि देखिए हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, मगर लिफ्ट में फर्स्ट से लेके 14th फ्लोर तक एक साथ तो खड़े रहना है, तो कुछ ना कुछ स्मॉल टॉक तो करना पड़ेगा। अब बात यह है, स्मॉल टॉक में मैं इतना माहिर हूं नहीं, मुझसे हो नहीं पाता है। तो वो सर जो है मुझे बोल रहे थे गर्मी बहुत है बाहर, ये है वो है। तो मैं कहते बात तो सही है, गर्मी बहुत है। तो लिफ्ट में खड़े होकर जब भी हम कोई स्ट्रेंजर हमारे आसपास होता है ना, तो कुछ कुछ एक्शंस होते हैं हमारे, या फिर कोई ना कोई ऐसे एक्शंस करता है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ यार थोड़ा ऑकवर्ड तो है माहौल। या तो हम जितने भी फ्लोर्स हैं उन सारे बटन्स को देखते रहते हैं, या फिर ऊपर देखते हैं, या फिर शीशे में देखते रहते हैं, या फिर ऐसे छोटा सा स्मॉल टॉक करने की कोशिश करते हैं। मगर मैं कहता हूं कि अगर लिफ्ट में जाते हो तो कभी कभी स्मॉल टॉक करने की कोशिश करो। एक नए इंसान से बात हो जाएगी, एक नया कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, क्या पता एक बहुत ही बढ़िया बात आपके साथ हो, एक बहुत बढ़िया इत्तेफाक आपके साथ हो। तो ऐसे खूबसूरत इत्तेफाक जो हैं इस दुनिया में हर जगह छुपे हुए हैं, और लिफ्ट भी उनमें से एक है। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
1: ज्यादा वैल्यू के साथ, स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: हाय रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज रणवीर सिंह, स्टे ट्यून्ड।

0: आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है. आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. तो आज एक्सीडेंटल इन्वेंशंस में हम बात करने वाले हैं बबल रैप के बारे में. 1957 में दो इंजीनियर्स जो हैं वो एक ट्रेंडी टेक्सचर्ड वॉलपेपर बनाने की कोशिश कर रहे थे जो पेपर से बैक किया गया था, मगर वो वॉलपेपर काफी बढ़िया तरीके से फ्लॉप हो गया. बट उन्होंने नोटिस किया कि इस वॉलपेपर में जो है एयर पॉकेट स्ट्रैप्ड है. तो फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इसे एक शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल की जैसे यूज किया, जो बाद में एक एडिक्टिव स्ट्रेस रिलीवर भी बन गया. और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.
1: Awesome. Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
2: Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai.
3: Awesome.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: स्कूल खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
2: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
1: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
2: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
3: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
4: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है. आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपने बच्चे को हिस्सा बनाना चाहते हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब का, जो रयाला मेडिकल सेंटर ऑर्गेनाइज कर रहा है 4 सितंबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर. आपको रजिस्टर करने के लिए OR टाइप करना है, एक छोटा सा स्पेस डाल के आप अपने बच्चे का नाम जो है हमें सेंड कर दीजिए. नंबर है 3311063 और रजिस्टर कीजिए. सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को जो है कॉल बैक जाएगा. और यही बात बोलते हैं हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
1: टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ
2: लगा और हो जा रिचार्ज
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं, 3 घंटे जो है खत्म होने वाले हैं, मगर कोई गल नहीं, हम फिर से यहीं पे आएंगे आपके साथ बात करने के लिए। तब तक के लिए जाने से पहले आपके साथ एक एक दरख्वास्त है, आप अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, टिल देन स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं था आपका मेजबान सुदेव, जियो बिंदास। रेडियो

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को।
4: सुबह शाम बस यही टेंशन, बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
3: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
4: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
3: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले, लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
4: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
3: Brought to you by Riyadha Medical Center.
5: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
6: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
3: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more clean.

तो अर्ज किया है मुलाइजा फरमाइए कि और तुमसे ये दूरी मैं सह नहीं सकता, कि और तुमसे ये दूरी मैं सह नहीं सकता, और अब शाम की चाय के बिना और रह नहीं सकता। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ऑफ बर, मैं हूँ आपकी कशिश, और आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। तो आ गई हूँ आपको एंटरटेन करने के लिए एंड आपकी इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने के लिए अपना शो जबरदस्त इवनिंग लेकर। हाँ जी, अगर आप अभी भी सिमरन को मिस कर रहे हो तो मैं बता दूं कि अभी वो वादियों में इंजॉय कर रही हैं, तो उन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक आपको जो है अपनी शाम मेरे साथ ही बितानी है। वैसे देखिए, आज बहुत अमेजिंग गाने जो है वो आप सुनने वाले हैं, बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट जो है वो आपको मिलने वाला है। सो बस वॉल्यूम बढ़ाकर रेडियो ऑलिव पर स्टे ट्यून्ड रहिए एंड आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
2: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है, इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 5:10, दैट इज 5:10। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
3: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
4: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
3: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Deepika Padukone.
5: Radio Olive 106.3.
7: I'm in number one. Radio Olive.
8: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
9: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग।
10: जबरदस्त इवनिंग मेरे भाई,
9: सिर्फ रेडियो ओलिव पर।
10: जबरदस्त इवनिंग
9: जियो बिंदास।
11: Zabardast Evening. Make your drive golden with.
12: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
13: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: तो एक बार फिर से अर्ज किया है मुलायजा फरमाइए कि सूरज की बाहों में है ये जिंदगी, कि सूरज की बाहों में है ये जिंदगी, किरणों में है. ठीक है गाइस, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का गाना है ये, मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैंने कोशिश तो की. वैसे अगर आपको ये गाना कंप्लीट करना है तो आप आकर मेरे चैट पे 3311063 पर ये जो लाइन्स है इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं. वेलकम, गुड इवनिंग 106.3 रेडियो ऑल पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर अब जो है हम बात करने वाले हैं इस मौसम के मामले के ऊपर. हाँ जी, 41 डिग्री सेल्सियस इस वक्त दोहा में टेम्परेचर हो रहा है एंड आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है एंड आज का लोएस्ट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. सनसेट जो है वो 6 बजे थोड़ा पहले है, सो यानी अब सनसेट के ओर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं. सो अगर आप लोग मुझे जो है अच्छे से ऐसे सुर्ख से आसमान की एक प्यारी सी फोटो जो है वो व्हाट्सएप कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. 3311063 इज माई नंबर. जल्दी से कहीं पर अगर आप खड़े हुए हैं, गाड़ी आपकी रुकी हुई है या बस पैदल चल रहे हैं तो मुझे एक फोटो खींच के जल्दी से भेज दीजिए, मैं आपकी फोटोज का इंतजार कर रही हूँ. 3311063. फिलहाल अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय कीजिए. अगर जरा आपको कुछ खास बताना है इस मौसम के बारे में.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: स्कूल्स खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
1: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
0: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
1: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
2: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
3: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
4: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
3: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
4: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
3: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
5: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास।
6: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

अजनबी कहा जी, अब तो अपनी जान पहचान अच्छी हो गई है, अब तो रोज का मिलना जुलना जो है वो हो गया है, बातचीत तो देखो रोज हो ही जाती है। एक्चुअली आपकी और मेरी बातचीत जो है हमारे घर वालों से ज्यादा होती है, मतलब हम अपने घर वालों से बात करें ना करें लेकिन आपस में बात जरूर कर लेते हैं। वेलकम जी, गुड इवनिंग, 106.3 रेडियो ऑल पर मैं हूँ आपकी कसुर शंशु, आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ जहाँ पर आपकी इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बीड़ा है, वो मैंने अपने इन कंधों पर उठाया हुआ है। अब देखो यार, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं मौसम में क्या कुछ बदलाव जो है वो हो रहा है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। सो एक एडवाइजरी जो है वो जारी करी गई है जिसमें ये लिखा गया है कि सेप्टेम्बर 1st से कतर में जो है वो हवाएं चलने वाली हैं। अब ये हवाएं फ्रेश भी हो सकती हैं लेकिन इसके साथ जो है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जो है वो आपको उड़ते हुए दिख जाएंगे जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी इफेक्ट होने वाली है। सो ये एडवाइजरी दी गई है जितने भी ड्राइव करने वाले लोग हैं उनके लिए कि गाड़ी जो है वो थोड़ा संभल के चलाइएगा। बाकी हवाएं चलेंगी तो मुझे ऐसा लगता है ह्यूमिडिटी जो है वो थोड़ी सी कम होगी एंड हमें थोड़ी सी राहत जो है उसका एहसास होगा। लेकिन हमेशा जो है हम ऐसे ही अच्छा अच्छा सोचते हैं लेकिन हमारे साथ इतना अच्छा होता कहाँ है। सो बस होप करते हैं कि ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हो और इस गर्मी से हमें थोड़ी सी राहत जो है वो मिल जाए। बाकी आप जो है गाड़ी संभल के चलाइएगा, बस मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ। बाकी आप सबने अभी तक फोटोज नहीं भेजी यार मुझे, 3311063 इज द नंबर। जल्दी से अगर आपकी गाड़ी रुकी हुई है या आप कहीं साइड में खड़े हुए हैं या गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो जल्दी से आसमान की फोटो खींच के मुझे भेज दीजिए। यू नो वॉलपेपर वर्दी फोटोज जो है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। सो जल्दी से 3311063 पर मुझे फोटो भेज दीजिए। सनसेट होने का जो है वक्त हो रहा है तो कितनी अमेजिंग फोटो आएगी। ये बिना खिड़की वाला स्टूडियो जो है मुझे ज्यादा अच्छा लगता नहीं है, आपकी नजरों से शायद मुझे आसमान देखने का मौका मिल जाए। सो जल्दी से जो है मुझे फोटोज भेजिए 3311063 पर। फिलहाल आयशा मूवी से सुनो आयशा गाना जो है आरएफ के रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए एंड इस गाने को सुनते हुए आप मुझे इमेजिन कर सकते हैं, मतलब अगर मेरी पर्सनैलिटी का कोई गाना होता तो ऑफकोर्स यही होता। वॉल्यूम बढ़ाओ, आपकी कशिश के साथ एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू
3: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है कैसे समझाऊं इस लड़के को
4: उफ़ सुबह शाम बस यही टेंशन बच्चों को लेक्चर नहीं हम देंगे फुल ऑन फन बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब
3: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
4: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
3: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज
4: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर
3: Brought to you by Riyadha Medical Center.
5: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
6: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
3: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
7: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
8: Zabardast evening. Make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

0: कॉल सोनी है।
1: वैसे गाने का नाम पपीता है या पपीता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसे जो है सुनने के बाद मुझे ऐसा जरूर लगा है कि पपीता जो है वो खाया जा सकता है, अब मन सा हो गया है देखो। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसु संचो, आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग। एंड आप लोगों से बस एक इल्तजा की थी प्यारी सी, आप लोगों ने तो बाहर ही ला दी मेरे लिए फोटोज की। सो जी सनसेट होते हुए जो है एक बहुत ही प्यारी प्यारी फोटोज जो है मेरे पास आई है, वॉलपेपर वाली फोटोज बिल्कुल है। सो अमीर मोहम्मद जी ने जो है मुझे बहुत ही प्यारी सी फोटो भेजी है, एंड एक नहीं बहुत सारी भेजी है। एंड उसके बाद एक और फोटो आई है मेरे पास, सर का नाम जो है वो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन इमरान खान जी ने जो है वो भी एक फ़ोटो भेजी है, उन्होंने लिखा है सॉरी सूरज नहीं दिख रहा है यहाँ से, लेकिन कोई बात नहीं, आपके एफर्ट और आपकी इस अमेजिंग फोटोग्राफी के लिए थैंक यू सो मच। दानिश शेख जी ने भी बहुत अमेजिंग फ़ोटोज़ भेजी हैं, जैन अली जी ने जो है मुझे फ़ोटोज़ भेजी हैं, एंड प्रियंका जी ने मुझे हाई लिख के भेजा है, मोहम्मद यूसुफ खान जी ने जो है हैप्पी मंडे इवनिंग लिखा है, थैंक यू सो मच। कैसी हैं कशिश आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ, और बस आप लोगों के मैसेजेस पढ़ने के बाद और अच्छी ही हो गई हूँ। गुड इवनिंग जो है वो असमा जी की तरफ से आया है, तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए, एंड यू नो इतना सारा प्यार, इतनी वॉलपेपर वर्दी फोटोज़ देख के मुझे सब मज़ा सा आ जाता है। वैसे कुछ और लोगों ने भी मैसेज किया है, और लोगों ने अपने नाम को मैसेज किया है ओ आर के साथ, हाँ जी आपको भी ये करना है, अगर आप अपने बच्चों के साथ जो है थोड़ी सी यू नो फन फॉलिक मस्ती मज़ा वाली एक्टिविटी करना चाहते हैं, उनके स्कूल जाने से पहले जो है एक बार और उन्हें खुल के खेलने का मौका देना चाहते हैं, साथ में चाहते हैं कि वो गुड हैबिट सीखें एंड हाइजीन सुपर हीरो बन जाएं, तो देखो यार रियादा मेडिकल के साथ जो है हम एक और बहुत ही अमेजिंग वाला इवेंट जो है इस 4th of September को जो है कर रहे हैं, जहां पर आप आ सकते हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सो OR जो है वो आपको जाके हमारे व्हाट्सएप पे टाइप करना है, एंड अपना नाम, अपने बच्चों का नाम बेसिकली जो है वो आपको लिखना है, 3311063 इज द नंबर, जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए, बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स हैं, लिटरली बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं। सो जल्दी से OR के साथ अपने बच्चे का नाम जो है वो मैसेज कर दीजिए 3311063 पर, हमारे तरफ से फिर आपको कॉल आ जाएगा। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
2: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स,
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए।

कभी कभी ये बॉलीवुड वाले इतनी ज्यादा हैवी उर्दू यूज कर लेते हैं ना कि मुझे समझ नहीं आ पाता है। मतलब उर्दू मेरे घर में भी जो है बोली जाती है एंड डेली लाइफ में भी उर्दू का यूज होता है, लेकिन रूहदारियाँ क्या होता है? रूहदारियाँ का मतलब तो मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं बताया। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ओवर, मैं हूँ आपकी कसुसन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब ये नाजुक कंधे जो है ये कितनी मेहनत करेंगे, मतलब अभी मेरी मम्मी जो है मुझसे पूछ रही थी कि तुम जो है अगर ऑफिस आती हो तो सुबह से उठ के क्या करती हो। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मुझे जो है मेरी जीन्स फोल्ड करने में ही एटलीस्ट 2-3 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि मुझसे फोल्ड नहीं होती यार वो, और जीन्स तो चलो फिर भी हो जाती है, जो कुछ ऐसे टॉप है शर्ट है ये हो ही नहीं पाती है। एंड आज तक मतलब सच में इतने साल हो गए मुझे मेरा ब्लैंकेट जो है वो अभी तक फोल्ड करना नहीं आ पाया है। तो मम्मी अब जो आप मुझे बोल रही थी कि ये सब सीखना ज़रूरी है, अब इसके लिए डिवाइस आ चुका है। हाँ जी, पहले जो है हमारी रोटियां गोल नहीं बन रही थी, वो गोल बनाने के लिए डिवाइस आ गया। हमें कपड़े धोने में दिक्कत आ रही थी, उसके लिए डिवाइस आ गया। उसके बाद हमें बर्तन धोने में दिक्कत आ रही थी, उसके लिए डिवाइस आ गया। अब डिवाइस आ चुका है हमारे कपड़ों को फोल्ड करने के लिए। हाँ जी, सो बिल्कुल हमारे डिश वॉशर की तरह ही एक डिवाइस जो है वो मार्केट में लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको बस अपने धुले हुए कपड़े ड्रायर से निकालने के बाद उसमें एक साथ डंप कर देने हैं, एंड वो अपने आप इतना इंटेलिजेंट है कि वो सारे कपड़ों को अलग अलग कैटेगरी वाइज सेग्रीगेट कर सकता है कि ये टी शर्ट है, ये टॉप है, ये जो है स्कर्ट है, ये जीन्स है, ये कुर्ता है, एंड उसके हिसाब से वो आयरन करके उसे फोल्ड कर देगा वहीं के वहीं। एंड उसके बाद आप जो है उसमें ये भी कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको फोल्ड किस टाइप से चाहिए, कि आपको जो है छोटा फोल्ड चाहिए, बड़ा फोल्ड चाहिए, इस टाइप से फोल्ड चाहिए, सब कुछ हो सकता है उस एक मशीन में। देखो अगली परचेज मैंने जो है वो सोच के रख ली है कि मैं अपने पैसे बचाने वाली हूँ, नया फोन लेना था मुझे लेकिन फोन से इंपॉर्टेंट मुझे अब ये डिवाइस लग रहा है, सो मैं तो अब ये डिवाइस जो है वो खरीदने वाली हूँ। आप बताइए कि आपको अगर एक मौका दिया जाए इस टेक्नोलॉजी से डिमांड करने का कि यार देखो मार्केट में इस काम को आसान करने के लिए कोई डिवाइस ले आओ, तो वो कौन सा डिवाइस होगा बताइए मुझे। मैं हूँ आपकी कशिश और आपके साथ ज़बरदस्त इवनिंग जो है वो इंजॉय कर रही हूँ। गाने जो है वो बहुत अमेजिंग वाले आपको सुना रही हूँ, तो वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ इंजॉय करो और ज़रा मुझे बताओ 3311063 पर कि इस टेक्नोलॉजी से ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आप डिमांड कर रहे हो, कौन सी एक ऐसी मुश्किल चीज़ है जिसके लिए कोई मशीन जो है वो इन्वेंट करनी चाहिए बताइए मुझे। एंड थोड़ी सी देर बाद जो है एक गेम जो है वो हम खेलने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास। Here we go.

क्यों थक रहे हो?

0: गाना खत्म, पैसा हजाम।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
2: तो जी, आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 6:11, दैट इज 6:11। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
3: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
4: सुनो सुनो सुनो,
5: आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
6: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में, विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
5: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
6: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
5: द वेट इज फाइनली ओवर।

निकिता गांधी की आवाज में रश्मि रॉकेट मूवी से जिद गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एफएम। मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूं, जहां पर आपकी बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, मुझे ना बहुत मजा आता है जब आप लोग मुझसे इंटरेक्ट करते हो, एंड सबसे ज्यादा मजा तब आता है इंटरेक्शन जब सवाल जवाब में होता है। सो जैसे कल मैंने आपसे एक बहुत ही क्यूट सा गाना जो है वो पूछा था अपने चुटकी भर सॉन्ग में, और हमने कॉन्टेस्ट किए थे आपके, मतलब कॉन्टेस्ट की जगह कॉन्टेस्ट, यू नो यू गेटिंग That right. So, आज की कॉन्टेस्ट में भी एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना जो है वो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। चुटकी भर सॉन्ग आपको मैं सुनाऊंगी और आपको गेस करना होगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर मैं आपको टेक्नोलॉजी से एक डिमांड करने बोलूँ कि यार इस चीज़ के लिए डिवाइस बना दो, तो वो कौन सी चीज़ होगी। सो अस्मा जी ने मुझे मैसेज किया है कि मैनीक्योर और पेडीक्योर के लिए जो है एक डिवाइस जो है वो आना चाहिए, जिसमें बस आप ऐसे पैर रखें और मैनीक्योर पेडीक्योर हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है अस्मा जी ये आ भी चुका होगा, हमें इसके बारे में पता नहीं होगा। सो इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को चुटकी भर सॉन्ग वाला कॉन्टेस्ट जो है वो शुरू हमें कर देना चाहिए। सो वॉल्यूम बढ़ाइए अपनी स्पीकर्स का, एंड जल्दी से जरा कान लगाकर और ध्यान लगाकर ये जो गाना मैं सुना रही हूँ, चुटकी भर जो गाना सुनाऊंगी मैं आपको, उसे सुनिए और मुझे बताइए कि ये गाना जो है ये कौन सा है, गाने का नाम क्या है, एंड ये कौन सी मूवी का है। जरा वॉल्यूम बढ़ा कर एंजॉय कीजिए।

0: ये देखिए सिंगर नहीं कह रहे हैं, ये मैं कह रही हूँ कि मैं तो लाजवाब हूँ और मैं बस आपसे यही मनवाना चाहती हूँ। जल्दी जल्दी जो है मुझे मैसेज करिए 3311063 पर कि ये जो गाना है ये कौन सा गाना है। आपने आई एम श्योर आपने पहचान लिया होगा इस गाने को। सो जल्दी से मुझे मूवी का नाम एंड इस गाने का नाम जो है जल्दी से बता दीजिए 3311063 पर। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: fresh on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास।
3: Zabardast evening. Make your drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

Now this is something that's called चटपटी गाने. मतलब हमेशा हम वो कुछ गाने हैं जिन्हें जो है हम चटपटा कंसिडर कर देते हैं, लेकिन ये है असली चटपटे गाने जिन्हें सुनते ही आप ना अपना डांस रोक नहीं सकते हो. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर हम आपके कॉन्टेस्ट कर रहे थे एंड आपको चुटकी भर सॉन्ग जो है वो मैंने सुनाया था एंड आपसे पूछा था कि यार बताओ ये गाना कौन सा है. तो सबसे पहले तो एक मिनट, मैं आपको आंसर नहीं बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन है जिसे सही आंसर दिया. लेकिन उससे पहले जो लोग आंसर नहीं दे पाए हैं, जो लोग सुन नहीं पाए थे, उन्हें एक मौका मुझे लगता है कि मिलना चाहिए. बस इसीलिए आपको जो है मैं गाना फिर से सुना रही हूँ. सो एक बार जरा ध्यान लगा कर और कान लगा कर ये गाना सुनो.

तो जी देखिए, ये गाना मैंने आपको सुनाया था और आपसे पूछा था कि यार जल्दी से बताओ कि गाना जो है इसका नाम क्या है एंड ये कौन सी मूवी का है। सो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है। सबसे पहले तो मैडम ने मुझे मैसेज किया है, ऑडियो नोट भेजा है, लेकिन मैडम जी आपने अपना नाम नहीं लिखा है, सो प्लीज़ अपना नाम मुझे बता दीजिए। उसके बाद बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है, तो आइए शुरू करते हैं। यास्मीन नास जी ने जो है ये लिखा है, बिल्कुल सही। मैं ना अभी मूवी का नाम लेने वाली थी, सो थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही आंसर है आपका। उसके बाद यासदानी जी ने, गुलाम यासदानी जी ने जो है वो बिल्कुल सही आंसर दिया है। उसके बाद फिलिप सैमुअल जी ने भी जो है एक ऑडियो नोट भेजा है, थैंक यू सो मच। एंड आसमा जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद फराज जी ने, मोहम्मद फराज जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। मूवी का नाम सबने सही बताया है, गाने का नाम जो है वो थोड़ा आगे पीछे हुआ है। सबने लिरिक्स जो है वो गाने के नाम के तौर पे भेजे हुए हैं, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है 3311063। ये जो है हमारा नंबर है, इस पर आकर आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो गाना मैंने आपको सुनाया है कौन सी मूवी का है, इस गाने का नाम क्या है। चुटकी भर सॉन्ग हमारे इस कॉन्टेस्ट का नाम है। तो चलिए चटपटे गानों की बात करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एक और चटपटा गाना जो है वो हमें इंजॉय कर लेना चाहिए। गाने का नाम है प्रेम की नैया, अजब प्रेम की गजब कहानी से आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है। वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: स्कूल्स खुल चुके हैं और हर तरफ बस रश ही रश।
1: इसका मतलब अब शॉपिंग और भी ज्यादा होगी, यानी शॉपिंग करने में मजा भी और ज्यादा आएगा।
0: और सफारी में 10, 20, 30 प्रमोशन फिर से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से।
1: अब आप अपनी जरूरत का हर सामान, ग्रोसरीज, बेकरी, हॉट फूड, फुटवेयर, बैग्स और फैशन आइटम्स अपने बजट के मुताबिक खरीद सकते हैं।
2: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
3: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
4: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
3: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
4: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें।
3: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
5: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो विद मजराती।
0: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलीशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ। ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
6: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: मैं हूँ सारिका
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क रेडियो

बीपराग जी, वैसे तो देखिए आप गलत कर रहे हैं। हमारे में ना ऐसे तू तू तू नहीं कहा जाता, हमारे में बड़े ही लहजे के साथ जो है आप कहा जाता है। नो वंडर आपको इतने दुखी दुखी गाने बनाने पड़ रहे हैं। आप इज्जत से बात करके देखिए, फिर ऐसे खुश खुश मिजाज वाले गाने आपको मिलेंगे ना कि मैं क्या बताऊं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं जबरदस्त इवनिंग, जो यहाँ पर आपकी बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा के रखी है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक जो है गाना सुनाया था, ये वाला, जिसे मैं चुटकी भर सॉन्ग वाले कॉन्टेस्ट में आपसे पूछ रही थी कि इस गाने का नाम और जरा मूवी का नाम मुझे बता दीजिए।

0: आप सब लाजवाब हैं, ये सब आपने मुझसे मनवा ही लिया। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया, मतलब सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। एंड कंग्रेचुलेशंस, आप सबके जवाब बिल्कुल सही हैं। एंड अभी जो है कुछ और एक्स्ट्रा लोगों के जो है मैसेजेस मेरे पास आए हैं। आस्था जी ने मैसेज किया है, अमाल जी ने मैसेज किया है, एंड मोहम्मद कैफ जी ने जो है वो भी आंसर किया है। एंड इन सब ने सही सही आंसर दिया है, सो कंग्रेचुलेशंस। और आपके आंसर बिल्कुल सही हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो मूवी है, मूवी का नाम है यस बॉस, एंड ये मेरे पापा को बहुत पसंद है मूवी। एंड जैसे इस मूवी में शाहरुख खान अपने बॉस की हर बात को यस बॉस कहते हैं ना, उनका भी लाइफ का फंडा यही है कि मैनेजर जो कहे, जो आपका बॉस कहे उस पर यस बॉस कहो, आपकी लाइफ एकदम सॉर्टेड रहेगी। और बस इसी गाने चांद तारे तोड़ लाऊं गाने का नाम है। एंड ये गाना जो है मैनिफेस्टेशन की, यू नो, सिनोनिम है मैनिफेस्टेशन का। अगर आप मैनिफेस्टेशन को कोई गाने में ऐसे पोर्ट्रे करना चाहो तो वो ये गाना है। कभी भी आप ऊपर वाले से अपनी लाइफ के लिए कुछ बहुत बड़ा मांगना चाहते हो एंड आपके पास वर्ड्स नहीं है, बस ये गाना है जो आपको बस मतलब कंप्लीट कर लेगा आपकी हर दुआ को। सीरियसली, इसमें हर चीज़ का मेंशन है कि यार देखो, दौलत शोहरत तो है लेकिन प्यार भी चाहिए, एंड दिल का कमल खिले, सोने का महल मिले, मतलब सब मांग लिया है उन्होंने। सो बस मुझे ऐसा लगता है, देखो शाहरुख खान की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज यस बॉस मूवी में रही थी। तो एक बार अगर आपने यस बॉस मूवी नहीं देखी है सो जाकर ज़रूर से देखो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मूवी लगने वाली है। एंड वन ऑफ द बेस्ट पेयर्स की अगर मैं बात करूँ बॉलीवुड में, वैसे तो शाहरुख एंड काजोल के पेयर की बहुत बात होती है एंड शाहरुख एंड दीपिका के पेयर की बहुत बात होती है, लेकिन जूही चावला एंड शाहरुख खान इज़ द बेस्ट पेयर। मतलब जो कॉमिक टाइमिंग जूही चावला की है, कितनी खूबसूरत वो दिखती है, उनका स्क्रीन प्रेजेंस कितना अमेजिंग है, ये मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मैं मतलब मैं एक जेंजी किड हूँ लेकिन फिर भी मुझे शाहरुख खान और यू नो इतना पसंद है जूही चावला की ये पेयर और मूवीज़ की मैं क्या ही बताऊँ। सो एक बार जाकर यस बॉस ज़रूर से देख लेना। फिलहाल आपको यस बॉस करते हुए ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर यानी एकदम नया नवेला फ्रेश गाना आपको मैं सुनाने वाली हूँ। है जवानी तो इश्क होना है मूवी से उसका टाइटल ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Radio

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी टू शॉप।
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: check. Time check. Brought to you by Dhanat Al Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: So, ji, aapko waqt batane ka waqt ho chala hai. Is waqt studio clock mein ho rahe hain 7:12. That is 7:12. Stay tuned, Jio Bindas.
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑल ओवर जियो बिंदास।
4: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: ये गाना ऑटोमेटिकली जो है 10/10 था, लेकिन श्रीदेवी जी के बीच में जो आवाज आई है उसने इसे 100/10 बना दिया है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो जो है आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी बेसिक बोरिंग ऑफिस से वापस घर जाने वाली इवनिंग को जो है जबरदस्त बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, आई नो दैट इरिटेशन जब आप अपने ऑफिस में जो है अपनी कलीग को या अपने किसी इंटर्न को या अपने किसी दोस्त को जो है समझाने की कोशिश कर रहे हो या उसकी बात समझने की कोशिश कर रहे हो एंड वो बीच में कोई जेंजी सा स्लैंग जो है वो बोल देता है एंड आपको जो है समझ नहीं आता है। एंड लेटली आप ये रियलाइज़ करते हो कि सभी लोग जेंजी स्लैंग्स में बात कर रहे हैं। इंटरनेट का कोई कैप्शन है, आपको फोटो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन नीचे जो है जेंजी कोई स्लैंग लिखा है और आप उसका मतलब नहीं समझ पा रहे हो, या तो फिर किसी ने जेंजी स्लैंग जो है वो यूज़ किया है एंड आपने उसे कुछ और समझा एंड फिर आपको एम्बैरस होना पड़ा। सो देखो, इस एम्बैरसमेंट से आपको मैं बचाने के लिए आ चुकी हूँ, इस इरिटेशन से मैं बचाने के लिए आपको आ चुकी हूँ। सो बात हम करने वाले हैं आज के जेंजी डिकोडेड में एक जेंजी स्लैंग की, जेंजी वर्ड की। अब देखिए यार, मैं आपको इस वर्ड का मतलब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जितने भी जेंजी बच्चों के पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं या अगर आप जेंजीज के साथ जो है काम करते हैं या इंटरेक्शन जो है आपका होता है, तो मैं बस आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको इस वर्ड का मतलब पता है। तो पहले आप गेस कीजिए कि इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है एंड उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगी कि इसका मीनिंग क्या है। वर्ड है हमारा जेस्टर मैक्सिंग, JESTERMAXING, जेस्टर मैक्सिंग है आज का वर्ड। सो इस वर्ड को सुनने के बाद आपको क्या लगता है जेस्टर मैक्सिंग क्या हो सकता है, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। वर्ड से आपको कई बार ऐसे समझ आता है ना कि हाँ ये हो सकता है। सो जेस्टर मैक्सिंग आज का वर्ड है, आपको क्या लगता है कि जेंजी जेस्टर मैक्सिंग वर्ड जो है वो किस चीज़ के लिए यूज करते होंगे? 3311063 पर अपने गेसेस जो है आप मुझे भेज सकते हैं। किसी को सच में मतलब पता है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। JESTERMAXING ये जो है आज का वर्ड है जेस्टर मैक्सिंग। सो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि इसका मतलब क्या होगा। आकर गाने के उस पार मैं बताऊंगी आपको कि क्या मतलब है आखिर इस जेंजी स्लैंग का वर्ड का। तब तक जबरदस्त हिट जो है गाना वो एंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

देखिए जी, सावन की झड़ी तो नहीं लग पा रही है, लेकिन गाने प्ले कर कर ही जो है वो मौसम वाली वाइब ले लेते हैं, मॉनसून वाली वाइब ले लेते हैं। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिफेयर, मैं हूँ आपकी कसोस शो आपके लिए लेकर आ गई जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, मैंने ना ब्रेक पे जाने से पहले और आपको गाने सुनाने से पहले एक बहुत ही आसान सवाल आपसे किया था कि जेस्टर मैक्सिंग जो है ये एक नया जेंजी टर्म है, जेंजी डिकोडेड में आज हम इसी टर्म के बारे में बात कर रहे हैं। सो क्या आपके जान पहचान में कोई है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके यू नो सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं जो जेंजीज होंगे, उन्होंने क्या कभी जेस्टर मैक्सिंग वर्ड यूज किया है और क्या आपको इसका मतलब पता है? अगर आप गैस भी कर सकते हैं तो भी बताइए। सारा जी ने जेस्टर मैक्सिंग जो है वो लिखा है कि जब आप बहुत एक्स्ट्रा अच्छी तरीके से ड्रेस होकर आते हो, उन्होंने गैस किया है। वैसे गैस बहुत अच्छा है, हो सकता है ये, लेकिन थोड़ा सा अलग ही मीनिंग जेस्टर मैक्सिंग का। सो जेस्टर मैक्सिंग जो है उन फेक तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन प्रिटेंशियस लोग होते हैं ना, जो एक अलग तरीके से सर्टेन वे से एक्ट करते हैं, क्यूट एक्ट करने की कोशिश करते हैं, या बोलते हैं अरे मुझे तो ये आता ही नहीं है, मुझसे तो होता ही नहीं, मुझे तो काजल लगाना मुझसे मेकअप होता ही नहीं है, बिल्कुल मुझसे बिल्कुल नहीं होता। मतलब सोशल मीडिया में जिन्हें वॉनबी भी कहते हैं ना, मिलेनियल्स जिन्हें वॉनबी कहा करते थे, अब उन्हें जेस्टर मैक्सिंग कहने लगे हैं। सो जब भी सोशल मीडिया पे आप प्रिटेंड करते हैं, मतलब क्लमजी बनने का, गूफी बनने का या क्योटिक बनने का, मतलब आप जैसे नहीं हैं वैसे एक प्रिटेंड करते हैं ताकि लोगों का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर सकें, उसे कहते हैं जेस्टर मैक्सिंग। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई जो है वो इंटरनेट पे फेक बन रहा हो कि यार मैं ना चलते चलते बहुत बार गिर जाता हूँ या गिर जाती हूँ, या मुझसे ना मुझे तो मेरी बॉडी पे स्क्रैच ही लगते रहते हैं, मैं कहीं ना कहीं टकरा ही जाता हूँ अटेंशन पाने के लिए, तो आप कह देंगे स्टॉप जेस्टर मैक्सिंग। ठीक है, समझ आ गया। बाकी अगर ऐसे ही और कोई आपको वर्ड्स मिले तो आप मुझे बता सकते हैं 3311060 पर। फिलहाल ए दिल है मुश्किल मूवी से बुल्ले का गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, और बस कहते रहो जियो बिंदास।

सुनिधि चौहान की आवाज में आपने एंजॉय किया ये गाना। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर जबरदस्त इवनिंग जो है मतलब आपकी बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी बीड़ा मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा के रखा है। अब देखिए यार, आपको तो बताइए कि मुझे इंस्टाग्राम चलाने का कितना शौक है एंड इंस्टाग्राम पे रिसर्च पढ़ने का भी कितना शौक है। सो आज मेरे इंस्टाग्राम ने मुझे एक रिसर्च दिखाई कि अगर आपको अपना स्ट्रेस कम करना है सो वॉकिंग, डांसिंग और म्यूजिक सुनना तो एक अच्छा ऑप्शन हो ही सकता है, लेकिन उसके साथ रीडिंग सबसे बढ़िया ऑप्शन है। सो कंपैरेटिवली बाकी किसी एक्टिविटी से रीडिंग अगर आप करते हैं तो 60% जो है आपका स्ट्रेस कम होता है एंड आपकी लाइफ में हैप्पीनेस जो है वो बढ़ जाती है। सो अगर आपने रीडिंग अभी तक शुरू नहीं करी है तो मुझे ऐसा लगता है कि रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जिसे आपको अपनी लाइफ में जो है ले आना चाहिए, या एटलीस्ट एक पेज दिन में जरूर से पढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी बुक क्यों ना हो। सो एक बार रीडिंग को अपनी हैबिट जरूर बताइए। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी लाइफ में हैप्पीनेस में कुछ कंट्रीब्यूट करें, सो हैप्पीनेस लाउंज लेकर हम आपके ऑफिस में आ सकते हैं। सो बस आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्क प्लेस में, आपके ऑफिस में रेडियो ऑलिव के आरजेस पहुंचे, टीम पहुंचे, तो 3311063 ये हमारा नंबर है। इस पर जो है आप बस व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आइए कशिश, हमारे यहाँ आप इनवाइटेड हैं, तो हम अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाएंगे, फन फॉलिक मस्ती मजा करेंगे। वैसे मजे से याद आया, एक अमेजिंग वाला गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, चुनरी चुनरी लेट्स गो गाने का नाम है, है जवानी तो इश्क होना है मूवी से ये गाना है। सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ ये गाना एंजॉय करो और कह दे रहो जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

इतने सालों में मेरी मम्मी जो है मुझे सीधा चलना नहीं सिखा पाई, लेकिन इस गाने ने सबको जो है टेढ़े चलने पर मजबूर कर दिया था। सब लोग एक साथ टेढ़ा चल रहे थे। पुष्पा का ये गाना जो है आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलिफ पर। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए जबरदस्त इवनिंग लेकर आ गई हूँ। एंड पता नहीं क्यों यार ये गाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एंड एक इसका मिक्स्ड वर्जन है जहाँ पर इसका जो साउथ वाला वर्जन है इसी गाने का वो इसमें ऐड हो जाता है। एंड वो जिस हुक पर आता है ना इतना अमेजिंग लगता है, इतना अच्छा लगता है मेरे को, ऐसे कुछ कुछ सा होने लग जाता है। सो ओके, मेरी एक्साइटमेंट को साइड रखते हैं, मैं बताया कि नहीं बताया मैंने, हाँ मैं हूँ आपकी कशिश एंड आपके लिए जो है बहुत ही अमेजिंग कॉन्टेंट जो है वो लेकर आई हुई हूँ। सो देखो, अगर आप मेरे जैसे चटपटे से इंसान हो जिसे जो है फन चीज़ें बहुत पसंद है एंड यू नो थोड़ी सी क्वर्की चीज़ें पसंद होती हैं, सो मैं बॉलीवुड की कुछ ऐसी जेम मूवीज आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको पता है एंड आपने देखी भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो है आप ये मूवीज रीवॉच नहीं कर रहे हो। सो एक बार जाकर फिर से ये मूवीज जाकर देखो, बस ये मैं आपको याद दिलाने के लिए आई, क्योंकि ये मूवीज जो है रियल ब्रेन रॉट जेम है हमारे बॉलीवुड का, मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना इन मूवीज में, अच्छी है, बढ़िया है। सबसे पहली मूवी है लेडीज वर्सेस रिकी बेल। ऑफ कोर्स रणवीर सिंह अमेजिंग लग रहे हैं, अनुष्का शर्मा अमेजिंग लग रही है, एंड एक मूवी में आपको तीन अलग अलग स्टोरीज मिल रही हैं, क्या बात है, वाओ। एंड उसके बाद मैं हमेशा इस मूवी को अपने फेवरेट कहती हूँ, ये मूवी है 30 मार खां। ओ माय गॉड, वो अपने वक्त पे जिस टाइम पे रिलीज हुई थी उस टाइम के लिए है ही नहीं, अभी अभी रिलीज होती ना तो एकदम सुपर हिट हो जाती। एंड इसके बाद एक मेरी पहली मूवी, मतलब ये मूवी मैंने सबसे पहले देखी थी, मतलब सबसे पहले देखी थी इन अ सेंस, मतलब मैं कुछ 2-3 साल की होंगी एंड इसे जो है मेरे डैड DVD में लेकर आए थे एंड मैंने तब देखी थी। एंड ये ही मूवी थी DVD में, तो मुझे जब भी मैं रोती थी तो मुझे दिखा दी जाती थी। सो इसीलिए मुझसे शादी करोगी इस लिस्ट में जो है 3rd नंबर पर है। सो एक बार ज़रूर देखो विकेड सनी। ओ माई गॉड, अक्षय कुमार एट हिज पीक। मतलब अगर आपने अपने पार्टनर के साथ भी अभी तक मुझसे शादी करोगी नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार। झुमका दिलाऊंगा, कंगन दिलाऊंगा, जब तक कोई मुझे ये नहीं बोलेगा तब तक तो मैं हाँ ही नहीं बोलूंगी उसे। सो ये कुछ मूवीज़ हैं जो आप जो है रीवॉच कर सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं, एक बार ज़रूर से देखिए। बाकी आपकी कोई ऐसी बॉलीवुड कल्ट फेवरेट मूवी है सो वो आप मुझे बताइए 3311106 पे। मैं पक्का सभी को रिकमेंड करूंगी एंड आपका नाम लेके रिकमेंड करूंगी कि इन्होंने जो है ये मूवी आपको रिकमेंड की है। फिलहाल कॉकटेल 2 मूवी से, जो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रही हूँ मूवी, उससे एक गाना है जो फुल्ली रिकमेंडेड है, अमेजिंग गाना है, इसे एंजॉय करो वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास
2: टाइम चेक
3: brought to you by
2: नानाताल पहाड़ the ultimate कतरी adventure सुकवा के अलखोर।
4: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में।

0: हो रही है 8:14, दैट इज 8:14, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी, नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट। बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड। दानादल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर, सुक वाकिफ अलखोर।
2: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
4: जबरदस्त इवनिंग, मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: देव नेगी और जारा खान की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलिफेंट। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बेसिक इवनिंग को जो है जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, काफी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि यार कशिश, आपने ये तो बता दिया कि रियादा मेडिकल सेंटर में जो है बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब होने वाला है, जहां पर हमारे जो बच्चे हैं वो हाइजीन सुपर हीरो बन सकते हैं, यानी वो खेलते हुए जो है हाइजीन के इंपॉर्टेंस समझेंगे और फ्राइडे को जो है उनका फन फॉलिक मस्ती मजा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अपने बच्चों को रजिस्टर कैसे करें? अब देखो, मैं काफी बार वैसे तो बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यार अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में जो है ऐसे बार बार बातें बताई जा सकती है। सो मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो है इस बैक टू स्कूल क्लब में, जूनियर केयर क्लब में अपने बच्चों को रजिस्टर कर सकते हैं इस फ्राइडे को, यानी 4th of September को जो है सुबह आप अपने बच्चों को रियादा मेडिकल सेंटर ला सकते हैं एंड यहाँ पर हम एक फन फॉलिक मस्ती मजा वाला सेशन करने वाले हैं। रेडियो ऑलिव की वहाँ टीम होगी, हम अपने आपके बच्चों को बहुत सारे अमेजिंग गेम्स खिलाएंगे एंड उन्हें जो है हाइजीन की इंपॉर्टेंस भी सिखाएंगे। सो एक बार स्कूल जो है वो पहुंचने से पहले मुझे लगता है कि उनको जो है खुल के खेलने का मौका दे देना चाहिए, इसीलिए जो है रियादा मेडिकल सेंटर में आप अपने बच्चों के साथ पहुंच सकते हैं। लेकिन देखिए, स्पॉट्स जो है वो काफी लिमिटेड है, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आप अपने बच्चे को रजिस्टर कर सकते हैं, आपको बस हमारे व्हाट्सएप नंबर यानी 3311063 पर अपने बच्चे का नाम भेजना है एंड उसके साथ भेजना है OR यानी ऑलिव और रियादा, OR लिखकर आप भेजिए अपने बच्चे का नाम एंड बस रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा और हमारे साइट से आपको एक कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। तो यार देरी किस बात की है, अपने बच्चे को रजिस्टर कीजिए एंड सच में बहुत सारे लोगों ने हमारा जो पिछला इवेंट हुआ था बैक टू स्कूल वाला, उस पर बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स दिखाया था, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था। बस इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक और इसे आगे बढ़ाया जाए एक और स्टेप एंड बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटी करें जो उन्हें सिखाए भी कुछ। सो बस उन्हें हाइजीन सुपर हीरोज बनाएंगे हम वहाँ पर जो है बच्चों को बहुत फन कराएंगे लेकिन अच्छी बातें भी सिखाएंगे, जो मुझे लगता है एज अ पेरेंट आप तो चाहते ही है कि आपके बच्चे सीखें। तो जल्दी से अपने आस पड़ोस वाले बच्चों को भी जो है इस के बारे में बता दो, 3311063 पर बस मैसेज करके आपको जो है रजिस्टर करना है। तो जल्दी जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लो। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर इसे एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: Awesome. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है Awesome.

0: आज बहुत काम है।
1: मेरी भी तो सुनो।
0: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
1: वाओ।
0: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
1: I'm not listening to
0: you। कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडी।
1: I'm not listening
0: to you। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
1: Okay, I'm not with her।
0: तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
1: Okay, that's it।
2: Okay, that's it. मैं इतना खो गई थी गाने में कि मैं भूली गई थी कि मुझे जो है आपसे बात करनी है। वैसे इतने साल हो गए लेकिन आज भी लड़की क्यों लड़कों सी नहीं होती, इसका जवाब जो है वो मिल नहीं पाया है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बेसिक इवनिंग्स को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपनी नाजुक कंधों पर उठा के रखा है। अब देखो यार कि अक्सर जो है क्या होता है कि ये वाले सवाल तो काफ़ी हमने कर लिए कि लड़कियाँ जो है वो लड़कों से ही नहीं होती, लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा कॉमन होती है और वो है एज अ स्टूडेंट बच्चे जो है वो हमेशा सेम होते हैं, उनकी आदतें हमेशा सेम होती हैं। एंड एज अ पेरेंट आपको कुछ आदतें डेवलप करनी होती हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले। अब आप पूछेंगे कशिश यार ये कैसी आदतें हैं, क्या बातें कर रहे हो? देखो डिटेल डिस्कशन जो है इस पर हम कल करने वाले हैं 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, सो ट्यून इन करना बिल्कुल मत भूलना 106.3 रेडियो ऑलिव पर। ये शो जबरदस्त इवनिंग, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्लैनेट स्क्रिबल से, परिंदा मेहता से, जो आपको बताएंगे कि यार किस तरीके से आप एज अ पेरेंट आप बच्चों को जो अभी स्कूल जाने वाले हैं उनको और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करा सकते हो, ऐसी कौन सी एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको एज अ पेरेंट करनी ही चाहिए। सो ट्यून इन करना मत भूलना, परिंदा ने बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हमें बताई हैं एंड बहुत ही अमेजिंग ऐसे फैक्ट्स बताए हैं जो कि यार जिनके बारे में मैं सोच ही नहीं सकती थी। सो एज अ पेरेंट आपको इंटरव्यू जो है सुनना ही चाहिए, बाकी जैसे ही यूट्यूब पर आउट होगा आपको वहाँ पर भी जो है पूरा का पूरा इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा, आप बार बार भी देख सकते हो। सो फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना एंजॉय करो। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी आपसे थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बंदास।

0: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

एक टाइम पे निब्बा निब्बी एसोसिएशन का यानी क्रिंज कपल एसोसिएशन का जो है एकदम एंथम था ये गाना, एंड सच में हर जगह सोशल मीडिया पे यही गाना छाया हुआ रहता था। मेरे दोस्त जो है इस पे टिकटॉक बनाया करते थे। मैं भी सोचती हूँ उस टाइम पे जो है टिकटॉक बना ली होती तो अभी मेरे कितने सारे फॉलोअर्स होते, इस वक्त जो है कितना बढ़िया चल रहा होता मेरा शिज। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कंस्ट्रक्शन शो। आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे जबरदस्त इवनिंग, जहाँ आपकी बेसिक इवनिंग को जो है जबरदस्त बनाने की मैंने कोशिश की। देखो यार, आप इस बात से तो दोहराए नहीं वो कर सकते कि मैंने जो है कोशिश नहीं की। मैंने कोशिश बहुत की आपको एंटरटेन करने की, आपको फन कराने की, आपको बॉलीवुड की खबरें बताने की, आपको गेम्स खिलवाने की, और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत फन तो हुआ ही आपके रिप्लाईज देखने के बाद। सो देखो, अगर आपको अच्छा लगा है तो 3311063 पर आकर मुझे मैसेज कर दो, और अच्छा नहीं लगा तो भी मैसेज कर दो, क्या जा रहा है। एंड बाकी रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को जाकर फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पर जो है बहुत अमेजिंग कंटेंट जो है वो हम पोस्ट कर रहे हैं। बल्कि सारे ही सोशल मीडिया हैंडल्स को जाकर जो है फॉलो कर लो, वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगी, सिमरन भी आपको मिल जाएगी, वहां पर तनीषा भी आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से जाओ फॉलो कर लो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को। फिलहाल मैं चलती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो मेरे खाना खाने का वक्त हो गया। मैं चाहती हूँ खाना खाती हूँ, और आपको भी बस यही याद दिलाऊंगी कि खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, मुझे याद करते रहिए, एंड दोपहर में सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। मुलाकात होगी कल जबरदस्त इवनिंग में, तब तक जो है स्टे ट्यून्ड रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और सुनते रहो अमेजिंग वाले गाने वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो जियो बिंदास टाटा बाय बाय टेक केयर गुड नाइट।

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लेबनी एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
3: Brought to you by Naseem Healthcare.
4: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
3: Dr. On Air, brought to you by Naseem Healthcare.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Yeah, midnight love. Yeah, midnight love.

0: ये है मिडनाइट लाउंज,
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लव।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस कराफा।
3: आप सुन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लाउंज।
2: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
2: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम

0: टेनमैन की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।